महबूबे खिदमत अच्छे साहब एक सन्माने निमान निकाले रकान संकत श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी देकर बड़ी उम्मीद के नाम में बैठी गुरु साहब चंद जी आप जी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आप जी ने समा कटिया जलों आप जी ने सोच लिया कर आप उत्तर बाद में जाना है एक गल नारी आयद हो गई आगे हो गए थे सब जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत गलत की सच समझियो विद्वान लोग बैठे धन धन जी रणजीत सिंह साहब जी दशिया साहब जी कान जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच सिंह जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना जी गल पै गई है कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं बनने ये गल का मजबूत ना बनता गल है आत्म गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े ते अखर लग गया है ये तो आड़ है सच हिंदी भाई साहब जी कहा तो हाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी इसे धरतन शूट गलत पीछे है मैं दो गल कह के सात संगीत दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना ते पेंटिंग पेंटिंग का जरूर बन गया गाने का कुछ स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदा स्वरूप है ना परमेश्वर यह अनिज बात है जब जो सू समझ आ कीर्तन की है तो फिर सत्संग की आबादी की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लास्ट 25 मिनट टाइम है लास्ट तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर प्रब चोट बनानी राग कट्टी है शर्म करांगे गावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ ਨਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਤ ਮਸਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कथूरी को गाहक आयो लाद्यों का बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों उर्ज पहा मोहन ठगौरी।

वड्डे वड्डे महापुरुष कहते हैं कि अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता मतलब पाप भर के किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता उन्होंने वाहेगुरु के नाम भेजो रब वाल तेरे को नहीं रहेगा। खैर वाहेगुरु का मतलब कारण यही है असि ताई वरतते हैं कि असि खालसा बन जाए, खालस के रहे, गुरु के वल जाए, गुरु

एकदम थोड़ा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहेगुरु, एक थॉट आएगा वाहेगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहेगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते जे असी हर रोज करते जिस

सूर कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच। रब नहीं पीजदा ना पीजे केते होवे तूड़ कोई अपने आप नू तूड़ भी बना लवे। पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन लेखा लिखिए मन के पाए जे तेरा मन ही नहीं होया

तो हम तक की सुना है अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते हो कि सियाने हो तो वो एक गलत फहमी है। फिर महाराज जी की करिए, दसों की करिए। तो कहते हैं गुरु की मत तू ले आने। हम साथ तुम गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। तो आने शब्द जोड़ा निके निके बच्चे बैठे ने ना नहीं वरते। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी थी तो सुखमी साहब के लफज आने जोड़ा उन्होंने निके जो है न्याणिया जो 65 साल की उम्र में थी ये शब्द उन्होंने लिखा थे। उन्होंने बेचारे भोले पालन के भी समझ नहीं थी आने। तो सियाने फिर आने कौन हैं? याने ओ हन जिन्हों के पास ज्ञानक नहीं है पर उन्होंने वहन है ज्ञानक। जो ग्रोन न्याणे हन उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हन हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हन कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंगे है जो आखे हम बार तू गुरु पिता हैं जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी अते अभी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुझे बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हैं तो मैंने तुझे समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौलिया के नाल अकल आती है वह तो कोई संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूँ तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणप क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत तू ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हम वो अपनी सियाणप के डिग जाते हैं अपनी सियाणप के डिग जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति में जाओ उपरंत अगे चल गए।

नहीं माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चेतना चले मन पायो पंग मेरे चेतना चले मन पायो पंग मेरे चेतना चले।

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी दरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गरवास ना पड़े।

भाई बहुत मत जो बास बस मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते बार पीते एक जानो।

ताँ किस पै आप सुनाइए कहने कथन नाथ भिजे गोविंद हर भावे पैज लिखाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट में

पहली लाइन का मतलब तज सकल दुहकृत दुर्मति, अपने सारे ही बुरे काम नु छड़ के, दुर्मति बुरी मत नु छड़ के, पज चक्र धर वाहिगुरु जी कोल, वाहिगुरु जी दी

0: जगले जिस नजर ना आवे ता बात ना पूछे के।
1: एक होर सतगुरु फरमान कहंदे ने सुल्तान होवा ए जेड़ा राजा साहब ने वचन कीता ना दीवान दीवान माने हुक्म दौलत धन दौलत ते दीवान जे तू बेचारे आ जा मालिक श्री राग दे।

शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी, हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा, होवेगी किरपा। पर मन जापहो राम गोपाल, वो सृष्टि नूं पालण वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उहनूं मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकदा, सब आखो सतना। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कुछ जान नहीं सकता। पर ये जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जवाब मियां जी, तू सुल्तान कहा हों मियां। एक बादशाह नू क्या जो मिया जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होने तक हो रही है ना वो इन्नी की है कि किसी बादशाह नू मिया कहा जाए। तू सुल्तान कहा हों मिया, तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल। जांको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन एक सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय दी ये रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी कि यह असी रीत कल बचन किया। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना। असी इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ।

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।

जिनका कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई। रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ध्याव। जिन कीता मूड़ ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाई।

नहीं माए सो ब्रह्म बताए गुर मन ही माए मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले मन पयो पंग मेरे चित न चले।